ओम नमः शिवाय श्री सरस्वत्यै महालक्ष्मी महाकाल्यै च नमो नमः। श्रोतेव नमस्कार। हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरि भक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर धुंडा महाराज मठ उत्पात गल्ली पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरि भक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत आहे।

0: खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: Thirty-six,
0: nothing less, nothing more.
2: लेकिन

0: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: यस
1: योगी,
0: दैट्स राइट।
1: वेलकम।
0: थैंक यू।

0: विक्रम, भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अभी तक विस्की शुरू नहीं की।
1: बस यार यूं ही समझ ले, अभी तक नशे की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं।
0: पत्रकार जो ठहरे, पत्रकारी का नशा ही कुछ और होता है। एनीवे आई ड्रिंक फॉर यू, चीयर्स।
1: चीयर्स। लो सुनो, तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारी ये चीयर्स पसंद नहीं है।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आई मज मज बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

माँ किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।